0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग अरे पहली वाली बात कहाँ
4: परम तो सब यही डाले हैं
3: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
4: सच
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
4: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: बेला सिंधे की आवाज में आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, ए आर रहमान का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साधु एस तिवारी की आवाज, उन्हीं के बोल और उन्हीं का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

इला अरुण और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे वेल्डन अब्बा फिल्म का गीत, इला अरुण और डेनियल जॉर्ज के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर रंग तरंग।

0: लव शवते चिकन खुराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। दिलबहार और रेणु जगोत्रा की आवाजें, शैली के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन,
1: उड़ जा काले कावा,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

आपकी पसंद इस एल्बम से। मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे शेख आदम अबूवाला की लिखी गजल, अर्जन दासवानी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अदनान सामी और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे कौसर मुनीर के बोल, प्रीतम का संगीत, फिल्म बजरंगी भाईजान से ये कव्वाली आपने सुनी। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में निदा फासली के बोल, एमएम क्रीम का संगीत है, सुर फिल्म से सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में अपना देश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आज है विश्व नारियल दिवस, तो इस मौके पर यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं समुद्र नदी के किनारों पर फिल्माए कुछ गीत या उनसे संबंधित कुछ गीत जिसमें नावों का जिक्र हो।

मुकेश और साथियों की आवाज में उपहार फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंतराल के साथ।

0: बंधे हाथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव परमन की तर्ज।
1: कुछ रेशमी ख्वाब

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज सागर तट और नदी के किनारों की बातें हो रही हैं। तो सुनते ही ये गीत।

0: खुशबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ होगा।
0: और विविध भारती पर

0: रिश्ता कागज का फिल्म से गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

सागर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज सागर, सागर तट की बातें और माझी नैया की बातें भी हो रही हैं, उन्हीं से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत, जिसे गाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने, सावन कुमार टाक ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, सावन कुमार टाक की बोल और राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे विश्वात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और वीजू शाह ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन,
1: उड़ जा काले कावा,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्लू इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के साथ साथियों की आवाजें, मयूरपुरी के बोल ए आर रहमान का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम इस कार्यक्रम में एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं इस कार्यक्रम में। तो आज की इबारत आपको बता दें, लाख कहे कोई धन को माया, ये तो सबके मन को भाया। रुपया हो या पैसा बाबू, इसके दम पर चलता जादू। कोई ये कहे कि उसे धन की चाह नहीं तो भला ये बात कोई मानेगा? पैसों और कमाई के मामले में तो सभी यही कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वैसे तो कुछ ये भी कहते हैं कि पैसों की बारिश हो जाए और हम उसमें न सिर्फ भीगें बल्कि कुछ भर भी लाएं। वैसे पैसे कमाने से ज्यादा उसको बचाना जरूरी लगता है और ये काम बड़ा मुश्किल है। कुछ तो पाई पाई बचाते हैं तो कुछ अपनी कमाई के साथ साथ दूसरों की कमाई भी लुटाते हैं। कुछ इस कैश के लिए पसीना बहाते हैं तो कुछ बैठे बैठे ही सब कुछ पा जाते हैं। पैसों के मामले में क्या है आपकी राय? सोना चांदी और पैसे मन को लुभाएं या खुश हो जाते हैं अगर आपको मिल जाए एक कप चाय? तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द और इन पर कौन से गीत हम सुनवाएंगे। और आपने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं, बहुत से गीतों के बारे में भी आपने लिख भेजा है, तो देखते हैं।

आपके और हमारे गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के दौर में पैसा है तो सब कुछ है, पैसों से जिंदगी चलती है, लेकिन एक बात है, सब कुछ पैसे ही नहीं होते हैं, इज्जत भी बहुत बड़ी दौलत होती है। टन टन की सुनो झनकार, ये गीत इन्होंने लिखा है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो लिखी हैं, लेकिन ये सारी बातें तो हम करेंगे, उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का पहला गीत और आपको ये बताना है कि इसमें आवाजें किसकी हैं, और उसके बाद कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मनुष्य के सबसे कमजोर नब्स को टटोलती और कुरेदती इबारत है मोह माया में तृष्णाग्रस्त जीवन काल, आर्थिक उपार्जन और संबलता प्राप्त में व्यतीत हो जाते हैं, उत्तरदायित्व बोझ तले मानसिक अवस्था, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में जरूरत और व्यसन के माध्यम आर्थिक मेरुदंड को सुधारने में ही गुजरता है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम अगर इनकी बात को संक्षेप में कहें तो ये कहना चाहते हैं कि धन उपार्जन में ही इंसान का जीवन आधा से ज्यादा व्यतीत होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अच्छी बात धन की ही की गई है आज, बहुत अच्छी बात, उसे केवल रुपये पैसे सोने चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं से ही आंका गया है, जबकि एक सर्वाधिक लोकप्रिय ही नहीं अपितु मूल्यवान धन कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से गणना इसकी नहीं की है, वो धन है संतोष धन, जो वैष्णव परंपरा का द्योतक है। फिर इस दृष्टिकोण से ही तो कवियों ने गाया कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान रे, जब आवे संतोष धन बाबा सब धन धूरी समान रे। तो ये संतोष धन हम सब में समाये, ऐसे ही प्रयासों की अपेक्षा मनुष्य से की जाती रही, किंतु ऋण लेकर घी पीते रहने की आदत के चलते हम अपने यायावर रूप को भूल चारवाक दर्शन के अनुयायी हो चले हैं। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए, लेकिन सांसारिक धरातल पर हर व्यक्ति की अनिवार्य जरूरत और आकर्षण का केंद्र है धन। धन का प्रभाव सार्वभौमिक है और जीवन की अधिकांश व्यवस्थाएं इसी की शक्ति पर टिकी है। पैसा कमाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक या कठिन है उसे संभालना और बचाना। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि पैसे को कमाना फिर भी एक बार आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना और उचित तरह से खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं उचित तरह से पैसों को खर्च करने के लिए, हमें बताइए। और साथ ही ये बताइए कि क्या आप संतोषी जीव हैं या आपको हमेशा लगता है कि अभी तो कुछ पैसे कम हैं और कमाई करने की जरूरत है। वहीं ये भी बताइए कि पहली बार आपको पैसे की कीमत कब समझ में आई थी और पहली कमाई क्या थी। ये सारी बातें तो करेंगे, लेकिन आपको पहले हम सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आपको बताना है किस फिल्म का है।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

दुश्मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे साथी कह रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हालांकि इस गीत के बारे में देखते हैं ये गीत आपकी और हमारी लिस्ट में मैच करता है या नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि धन तो माया ही है जो हमारे ध्यान के पथ से भटकाते हुए संसार में बांधे रखने का कार्य करते हुए अपने गुणित अनुपात में बढ़ता ही जाता है। प्रक्रिया धन के वास्तविक स्वरूप के कारण ही संभव है, लेकिन अब देखना यह होता है कि हम धन के इस गुणित अनुपात को धन या ध्यान के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं क्या। और हमारे कौर साथी कहते हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए जरूरी तो है, पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को तो भारी कर सकती है, लेकिन आत्मा की खाली जगह को नहीं भर सकती। असली खुशी किसी तिजोरी की मोहताज नहीं, वो तो मन के किसी सुकून भरे कोने में रिश्तों की गर्मजोशी और एक सादे पल में चुपके से मुस्कुरा देती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मालिक इतना दीजिए, उन्होंने वो बात याद की है, मालिक माई साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ध्यान में रखने वाली बात है कि इतना धन तो जरूर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो किसी के आदर सत्कार कर सके और खुद भी खा सके, लेकिन बहुत ज्यादा की बात सोचना, वहां हम ये सोच सकते हैं कि एक अलग तरह का लालच अपने मन में ना लाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी हमें बता रहे हैं, और हमारे साथियों का कहना है कि आज की बात बिना मनी के यानी कि बिना धन के तो कोई जीवन नहीं है, लेकिन सब चीजों को एक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ये विश्व नारियल दिवस के मौके पर ये तो नारियल पानी पी रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन संपत्ति को ध्यान में रखकर जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते ज्यादा टिक नहीं पाते, जब तक दमड़ी तब तक ही है संगी साथी। तो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो बस इतना ही कहेंगे, पैसा इतना

जरूर हो कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, कभी किसी का काम भी आ सके। ज्यादा की चाहना रखी ही नहीं, ना ही फिर भी परमात्मा ने सब कुछ दिया है। असली धन दौलत तो परिवार होता है, दोस्त होते हैं और कुछ अपनों का साथ होता है, और सबसे बड़ा ईश्वर का हाथ, गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है और एक सच्चा साथी विविध भारती। अब देखो ना, इसमें कोई बहुत दिन तक नहीं आता तो उसको याद करते हैं, और अगर नहीं सुन पाते तो बेचैनी से लगती है, पर आज कब से लग रहा था, हमने इबारत ही नहीं देखी, तो ये भी किसी दौलत से कम नहीं। वाकई ये दौलत भी, आप लोगों का जो ये प्यार है वो तो किसी भी दौलत से अनमोल है हमारे लिए, और आपका ये प्यार हमें मिलता ही रहता है, विविध भारती को मिलता रहता है पूरे वक्त। हमारे बहुत से साथी हैं वो अलग अलग बातें लिख रहे हैं, और हमारे एक साथी ने उस गीत को जो शुरुआत में हमने गीत सुनवाया था काला बाजार का, उसमें कहा कि गीता दत्त की आवाज तो उन्हें पहचान आ रही है, दूसरी आवाज पहचान नहीं आ रही, पर हमारे दूसरे साथियों ने तो ये जवाब दे दिया था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, सच्ची खुशी तो मन के भीतर ही कहीं सोई रह गई, मन भागता है उम्र भर जिस मृग तृष्णा के पीछे, वहां सुख नहीं बस इच्छाओं का एक अंतहीन सिसकन है। तो बातें तो बड़ी हो गई, लेकिन कभी कभी तो ऐसा मन में आता है कि लॉटरी लग जाए हमारी और ढेर सारे पैसे एक साथ हमारे पास आ जाएं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, हमें बताइए, और क्या कभी आपको इस तरह से कोई धन मिला जब आपको लगा कि भई ये तो बोनस हो गया, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, हमें बताइए। और बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

पैसे को जवानी मेरी तरसे, पैसे पैसे को जवानी मेरी तरसे, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, कब जाएगी गरीबी मेरे

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्या आपकी कभी लॉटरी लगी, तो ऐसा कोई कमेंट अब तक तो हमारे सामने नहीं आया। और अगर कभी लॉटरी लगी या कभी ऐसा लगा कि किसी तरह से बहुत सारे पैसे मिल जाए, अगर मिल जाए तो क्या करेंगे आप, ये भी हमें बताइएगा। ये तो ठीक है कि पैसों पर लालच नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह सही है, लेकिन सोचने में क्या जाता है। अगर आप सोचें कि आपके हाथ लग जाए ढेर सारा पैसा, बहुत सारा नहीं, लाखों ना सही, हजारों में ही लग जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप, जितना आप चाहते हैं कुछ अगर मिल जाए तो क्या करेंगे आप, हमें बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाह जाग जाती है, कभी कभी थोड़ा सा धन, थोड़ा सा अपनापन और ढेर सारा संतोष ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, लेकिन धन दौलत के बिना मान सम्मान सुख सुविधा नहीं होती है, इसलिए धन दौलत बहुत कमाना चाहिए, दौलत के पीछे इतना भी नहीं दौड़ना चाहिए कि खुशियों को दांव पर लगाना पड़े, दोनों का संतुलन जरूरी है। मन में हमेशा तो यही गीत चलते रहता है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, यानी कि ये एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमें सोचें कि नहीं धन बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें कमाने की इस तरह से जरूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा उस पे हम संतोष करें, तो ये भी एक मुश्किल घड़ी पैदा कर सकता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार तो कमाने की कोशिश करना ही चाहिए और साथ ही साथ कुछ बचत भी करें, और ऐसा ना करें कि हर वक्त धन के पीछे भागें, लेकिन कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, जो हमारे साथी ने कहा। हमारे एक साथी कह रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट लिखा है जिसे हम हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अंदर बचत करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे माता पिता ने मुझे एक, हमें गुल्लक लाकर दिया था दोनों के लिए, और जो भी पैसे हमें मिलते थे गिफ्ट में, जो भी लोग आते थे या त्योहारों के समय जो भी पैसे मिला करते थे, उसे हम इसमें जमा करते थे और कुछ समय के बाद उसे खोलते थे। वो जब भी खोलते थे तो हम देखते थे कि उसका क्या परिणाम होता है, तो जब भी जो बचत का परिणाम देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है और ऐसा लगता है कि और भी बचाना चाहिए। वहीं हमारे का साथी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी अमीरी बैंक खातों में जमा अंकों से नहीं बल्कि मन के संतोष से तय होती है। संत कबीरदास जी का ये दोहा केवल दो पंक्तियां नहीं बल्कि इंसानियत, करुणा और मर्यादा का सबसे खूबसूरत आईना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाणक्य की नीति के अनुसार कह सकते हैं कि पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या ना तद्धनम। सरल हिंदी अर्थ है, विद्या यदि केवल पुस्तकों में रखी रहे यानी कंठस्थ ना हो तो उपयोग में ना लाई जाए, और धन यदि दूसरों के हाथों में चला जाए तो जरूरत पड़ने पर ना वो विद्या किसी काम की रहती है ना ही वो धन। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण मुझे कॉलेज पढ़ाई के दौरान ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मुझे याद है पहले ट्यूशन 1978 में 10 रुपए माह में शुरू कर दिया था। उच्च शिक्षा तो नहीं पा सका किंतु बच्चों को उच्च शिक्षित कर इंजीनियर बनाकर वो सपना पूरा किया। तो कई बार हमें इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, पर यकीन मानिए जब हम ऐसे अपने पैसे खुद कमाते हैं, अपनी पढ़ाई खुद करते हैं, तो जो आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है वो एक अलग किस्म का आत्मविश्वास होता है जो सभी के पास नहीं होता। तो अब हमारे साथी ने चाय पर भी कहानी लिख भेजी है, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। और इसको किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा, क्योंकि जिस फिल्म का जो नाम है उस पर भी बात करेंगे हम इस गीत के बाद।

कर्ज इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और हमने कहा था कि इस फिल्म के नाम से कुछ तो बात करनी है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पैसे कम होते हैं और जरूरत नहीं भी होती है तो भी बहुत से लोगों की आदत होती है कि कर्ज लेकर उधार लेकर अपने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जीते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती कि जितने पैसे हैं उसके हिसाब से वो खर्च करें। तो उधार लेने की आदत तो बड़ी ही खतरनाक होती है ऐसा कहा जाता है, और उधार देने की आदत में भी कई बार हम फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं कि कर्ज आपने दिया हो और उसे वसूलना बड़ा मुश्किल हुआ हो, या आप कभी खुद कर्ज लिए हो और आपको देना मुश्किल पड़ा हो। वैसे हमारी एक साथी ने चाय की कहानी लिखी है कि एक महाशय रोज अपने दोस्त से घर पर चाय पी लेते, ठीक चाय के समय आते, बेचारे शिष्टाचार वश उन्हें चाय भी देते। रोज उन्होंने अपनी आदत बना ली। एक दिन चाय पत्ती चीनी में कुछ कमी थी, चाय थोड़ी बनी थी और पत्नी खींची हुई थी। उसमें धीरे से उसने पति को बुलाकर चाय पिला दिया। परिवार के सदस्य बारी बारी से उठकर अंदर जाकर चाय पी लिए थे और पीकर बाहर आ जाते तो महानुभाव समझ गए कि आज चाय मिलने के आसार नहीं है। वो भी उतने ही ढीठ बोले, भाभी जी मुझे भी भीतर से बुलाकर कुछ बातें कर लीजिए।

0: तो बातें पूछ लीजिए। तो वो शर्मा गई और उन्हें पता चल गया कि भाई इन्हें तो चाय पिलानी ही पड़ेगी। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसा बहुत कुछ है। वहीं का साथी का कहना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यही आशा इसी आशा से अपने मन को संतुष्ट कर लेता हूं क्योंकि धन से तो कभी मन संतुष्ट नहीं होता। जितना धन होता होगा उतनी बेचैनी होती है। सुकून उसी में है जो उसके पास है, उसमें ही उसे खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना ही सुकून का सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो वाकई एक सुकून का धन तो एक अलग ही चीज होती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो और दिक्कत। बस मन में संतुष्टि होनी चाहिए और कोई अंत नहीं है इस चीज का। बस खुशी भरा अपनों का साथ होना चाहिए। और एक साथी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए लेकिन सांसारिक धरातल पर ये बहुत जरूरी है। मन मैं तो संतोषी लेडी हूं, ऐसा हमारे एक साथी कह रही है कि पैसे आज के टाइम पर बहुत जरूरी हैं। हम तो पूरी बचत करते हैं लेकिन जहां जरूरत होती है वहां खर्च करते हैं। पैसा कमाना मुश्किल भी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महमूद जी की फिल्म सबसे बड़ा रुपया आई थी, उसमें यही दिखाया गया था कि पैसे की कीमत क्या होती है। विलेन का रोल महमूद जी ने जरूर किया लेकिन एक सबक देने का प्रयास किया है। और एक साथी कहते हैं कि धन बढ़ाने के ऊपर मेरी अपनी निजी राय ये है कि धन हर कोई बचा सकता है लेकिन रिश्ते बचाना बहुत बड़ी बात होती है। धन आ जाएगा, कल चला जाएगा लेकिन रिश्ते आपके हमेशा आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। धन से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन धन से आप सब कुछ नहीं ले सकते। रिश्ते जिसके बच्चे हैं अच्छे हैं वही सबसे बड़ा बचत है, वही सबसे बड़ा धन है। और एक और साथी कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे की अहमियत सब समझ में आती है। जब कोई बीमार होता है तब पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, या कहें कि जब पैसा होता है तो इलाज के लिए हम पानी की तरह पैसे बहा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बड़ी गंभीर बातें हो गई। तो कुछ एक बात ऐसी करते हैं जो काफी दिनों से की नहीं, यानी कि आपको सुनवाते हैं एक गीत का शुरुआती अंश। आपको पहचानना है गीत, तो पहले ध्यान से सुनिए ये अंश।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।
0: तो आपको ये बताना है कि किस गीत का शुरुआती अंश है ये। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और साथ ही भी बताइए कि इस फिल्म का है।

भैया तुम मिस्टर, तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

कॉफी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन, आज कहां का नेशन, काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सत्य।

0: सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना महमूद और साथियों की आवाज में, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो गीत हमने शुरुआती अंश सुनवाया था आपने बिल्कुल सही पहचाना, लावारिस फिल्म का गीत काहे पैसे पे इतना गुरूर करी है। ये गीत तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, और ये आगे की बातें तो हमने पढ़ ली है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और एक और साथी का कहना है कि वाकई दोस्तों पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। और हमारे एक और साथी का कहना है, क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे रोड पे 15,000 रुपए मिला था एक पर्स में, मैं उसे मोबाइल नंबर खोज कर दिया, जब मैंने फोन किया तो वो मुझे अपशब्द कह रहे थे, लेकिन जब पैसे की बात की तो भाई बाप कहने लगे। तो यानी उनकी पूछ उन्होंने की अगर उनके पास पैसे थे, और पैसे गिरने पर वो बड़े परेशान थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसा दोस्ती प्यार और खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन ये वो चीजें खरीद सकता है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। और इसका पैसे को बचाने के लिए हमें, मतलब सीक्रेट इज टू आइडेंटिफाई दोज थिंग, तो हमें का ये सीक्रेट है कि हम उन चीजों की पहचान करें। और कुछ चीजें तो हमें फ्री में भी मिल जाती हैं, जैसे कि लिसनिंग टू एयर विविध भारती, ऐसा इनका कहना है। अंग्रेजी में इन्होंने अपना कमेंट लिखा जिसे हमने हिंदी में सुनाया, और विविध भारती को सुनना तो फ्री में हो जाता है ऐसा इनका कहना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से सुनते हैं, हालांकि इंटरनेट पैक तो लगता ही होगा इसके लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये मनोरंजन का खजाना है हम बिल्कुल मुफ्त में लाना चाहते हैं और लाते भी हैं। और आप भी हमसे जुड़ते हैं उसी मित्रता से, अपनत्व से, जो कि हमारे लिए अनमोल पूंजी है, जो हमें मिल जाती है मुफ्त में ही, लेकिन आप सभी हमसे जुड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पर लावारिस फिल्म का गीत क्यों ना सुने इस वक्त, सुनते हैं, और आपको ये बताना है कि संगीत किसका है इस गीत में।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

लावारिस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया इस गीत को, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तब मेले में और भी सामान के साथ मिट्टी के गुल्लक लाते थे और समय समय पर मिलने वाले पैसे उसमें डाल देते थे। कुछ समय बाद तीज त्योहार पर खोलकर उन पैसों से मनचाही चीजें खरीद लेते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की पावर कोरोना काल में सबने देख ली, पैसा जरूरी नहीं, स्वास्थ्य जरूरी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मर जाने के बाद कोई रुपया पैसा साथ लेकर नहीं जाता, बात तो 16 आने सच है मगर जीते जी यही पैसा दुनिया का हालचाल बता जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए जरूरी तो नहीं, जरूरी तो है पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को भारी तो करती है लेकिन आत्मा को खाली नहीं करती, वहीं हमारे आत्मा की खाली जगह को नहीं भरती, ऐसा कह रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुबह की चाय के लिए दूध चाय पत्ती शक्कर रोज कमाकर रोज दुकान से लाते थे, उसके बाद चाय बनती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितना भी हो सके कर्जा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम खाएं पर उधार नहीं लेना चाहिए, फालतू के खर्चे ना करें, हमारा ये मानना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि चीजें पहले ले लो और धीरे धीरे करके पैसे चुकाते रहो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई लॉटरी तो छोड़िए, मुझे कभी रास्ते में पड़ा रुपया भी नहीं मिला, मुफ्त का पैसा मेरे पास कभी टिका ही नहीं। इस संबंध में मेरा अनुभव हास्यास्पद रहा है। एक बार हम झांसी से ग्वालियर आए तो वहां सासू माँ ने 100 रूपये दिए और मौसी सास ने भी 100 रूपये दिए। वहां से हमें आगरा जाना था, देर हो रही थी, टिकट ले लिए लेकिन सुपरफास्ट की टिकट खिड़की से उठाना भूल गया।

करेंगे तो वो कह रहे हैं कि अगर लाखों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले आलिशान घर बनवाऊंगा, उसके बाद एक लग्जरी कार खरीदूंगा, बस दिन भर इधर उधर घूमूंगा, जो दुखिया रहे हैं उनको थोड़ी मदद दूंगा। जिस गांव में यदि पानी की व्यवस्था नहीं होगी उस गांव में सबसे पहले पानी की टंकी और पानी की व्यवस्था करूंगा, जिस गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही उस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात निराली, खाली जेब तो दुनिया खाली। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि धन बचाना अच्छा है लेकिन सबसे अच्छी बचत है अपने पूरे जीवन में कितने रिश्ते आप बचा पाए, अगर अपने रिश्ते ज्यादा बचा पाए तो वही सबसे बड़ी बचत है। धन तो आएगा चला जाएगा लेकिन जो अपने रिश्ते लोगों की भावनाएं बची वही सबसे बड़ी बचत है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो काम करते थे तब उन्होंने, इनका कमेंट अंग्रेजी में है, हम हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो काम करते थे तो उन्होंने कुछ पैसे इस तरह से बचत कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे किसी स्कीम में और उसके बाद वो उसे भूल गए और अपने काम में बिजी रहते थे तो भूल गए, और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें एक लेटर आया और उसमें लिखा था कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है उनके लिए, और जब उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज उसकी निभा दी तो उन्हें पेपर वर्क करने के लिए बुलाया गया और पेपर वर्क के बाद उन्हें जो पैसे मिले वो 10 गुना ज्यादा थे, जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उससे 10 गुना ज्यादा थे, और इन्हें उस वक्त लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई। तो भाई ऐसी लॉटरी भी होती है जिसके लिए हमने ही मेहनत की होती है, लेकिन जब भूल जाते हैं और पैसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्स में या जेब में पैसे रख के भूल गए और बहुत दिनों के बाद जब आपने उसे निकाला और पहना और वो पैसे आपको मिले तो कितना आनंद मिलता है? ऐसा कुछ हुआ तो हमसे साझा कीजिए, और ये भी बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: धर जय धर्मेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र
1: गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल
0: जगत नारायण के छोड़ के संतो

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम अरे बम बम नाचे किशोर कुमार बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को
1: आंसू और मुस्कान फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने उस समय समय समय पर धन का साथ हमेशा दिया है। श्रीमती कॉलेज में प्राध्यापक रह चुकी हैं, हम दोनों को पेंशन मिलती है, मेरा लड़का सीए और अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनका लिखा गीत तो नहीं आया अब तक, हम तुम और वो, ऐसा हमारे साथी ने फिल्म का नाम बताया, लेकिन आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ये गीत भी बड़ा ही अच्छा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत, उन्होंने कहा लेकिन ये तो नहीं है। दीवार फिल्म का संवाद एक एंगल की जुबानी, मेरा लड़का तो ऐसा नहीं था, शायद हमारी भूख देखी नहीं गई होगी, मगर देखा जाए तो देश में लाखों लोग भूखे मरते हैं, तो क्या सभी चोर बन जाए? पैसे की नैतिक शिक्षा का पूर्व उदाहरण है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल दोपहर से हमारे प्रांत में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, सावन नहीं बरस रहा है, भादो बरस रहा है। और हमारे कह रहे हैं कि काली घटाओं और बारिश की बात आज नहीं हुई, पैसों की बारिश की बात यहां हो रही है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं मोबाइल डिस्प्ले पर वीडियो और चला करें साथ में तो अच्छा रहेगा, पूरा गाना देखा भी करो, विविध भारती के स्टूडियो को देखते रहो, अपना कमेंट करते रहो। भाई ये तो कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं चाहत है उनका तो कोई सानी नहीं है, उनका ना कोई अंत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा दो 10 लाख देगा, ऐसा उनका कहना है, गीत उन्होंने बताया ये। और हमारे एक साथी कह रहे घर मुझे मिल जाए एक कप चाय और ना रखे जाए मेरे सामने ढेरों तरह के पकवान तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा, और अगर मेरे सामने ढेरों पकवान रखे जाए और एक कप चाय ना पिलाया जाए तो मैं कभी भी खुश नहीं हूंगा। तो चाय वाला गीत तो सुनवाना ही पड़ेगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार हैं, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं मेरे गुरुदेव किशोर कुमार की आवाज जैसा किसी की आवाज नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं अलग अलग बातें हमारे साथी बता रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि हमारे एक रिश्तेदार मुसीबत में थे, रिश्ता ऐसा कि 25 लाख की मदद की, फिर क्या था, समय बदला, जब रुपए देने का समय आया तो लालच मन में आ गया, पहले टालते रहे, बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, रुपए तो आज तक नहीं दिया पर भरोसा और रिश्ता खो दिया, अब हम किसी को हेल्प करने के पहले कई बार सोचते हैं। ये बात तो होती ही है। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं तो मन को शांति देने के लिए एक गीत तो सुन ही लेना चाहिए। आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है।

0: बॉबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाए उससे पहले हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान 1:20 को समाचार आते हैं और उस दौरान के गीत और बातें सुनने नहीं मिलती, प्रोग्राम का मजाक किरकिरा होता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप सुन सकते हैं निर्विघ्न ये कार्यक्रम ऐप के जरिए। न्यूज ऑन AIR ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप सुन सकते हैं लगातार कार्यक्रम जो भी हैं बिना समाचार के, जो एक बीच में आपको लगता है कार्यक्रम के दौरान जो आता है उसे आप इस तरह से टाल सकते हैं। और
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

डी दनादन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि उन्होंने अपना जवाब शायद के साथ लिखा, पर शायद नहीं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसों के बारे में क्या कहना, मैं तो अपने पैसों को ऐसे पुराने कपड़ों में भी छुपा कर रखती हूँ। एक बार मैंने पूरी पुराने कपड़ों की बैग एक लड़की को देखकर कहा कि इसको बेचकर आज यहाँ जिसको पहनना है दे देना। थोड़ी देर में वो वापस आ गई, मुझे लगा सारे कपड़े बिक गए, लेकिन कुछ पैसे उसने लाकर मेरी हथेली पर रख दिए कि ये आपके उस बैग से मिले हैं। कपड़ों के बीच में मैं इतना खुश हो गई उन पैसों को देखकर, जैसे मानो मेरे हाथों में खजाना लग गया हो। तो पुराने कपड़ों के बैग में कुछ चीजें दी थी इन्होंने और इस तरह से इन्हें वो मिल गई। और खजाना तो इस तरह से मिलता ही रहता है, जैसे आपके प्यार का खजाना हम तक पहुंचता रहता है। और हमारे कुछ साथियों का कहना है कि बहुत से गीत उनकी पसंद के तो आज सुनाए नहीं गए, और बहुत से साथियों का ये भी कहना है कि उनके लिस्ट के गीत शामिल हुए। तो भाई ऐसा होना तो संभव है, क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में सभी की पसंद या सारे गीत शामिल करना तो मुश्किल है। लेकिन आप सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती पर आपको कभी न कभी कहीं न कहीं आपकी पसंद के गीत जरूर सुनने मिलेंगे। तो आज के सुरीला सफर कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे

0: सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सुनने वाली सभी सखियों श्रोताओं को और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार से मुझे बात याद आई कि आज आप मिलते ही मुझे कुछ हेल्दी चीज खिलाई थी, वो थी नारियल की बर्फी।
1: भाई नारियल में बहुत गुण होते हैं। आप कुछ कह रही थी?
0: यही कहने वाली थी कि आप हेल्दी नमस्कार के साथ साथ जो अपना आहार होता है उसमें भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करती है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: भाई अगर बोलेंगे और अगर उसको नहीं पालन करेंगे उन बातों का तो कहने का कोई मतलब नहीं है। और हमेशा एक उम्मीद यहाँ पे रहती है कि कोई ना कोई एक सखी या हमारे श्रोता भाई अपने आदतों में या स्वास्थ्य में कहीं पे कुछ भी एक अच्छे सुधार लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया या करते हैं तो थोड़ा सा समय बढ़ाया या 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहते हैं और उसको समय देते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। तो इंतजार है शायद कभी कोई ना कोई एक कमेंट आए हमें
0: जी। और आज के जो खास दिन है, आज विश्व नारियल दिवस है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भी श्रोतागण लिखे कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रही बात व्यंजन की, तो आज हमने नारियल के व्यंजन ही चुने हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारी सखियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नारियल के व्यंजन भी लिखकर हमें भेजे,
1: वो भी लिख के भेजे हैं। और भाई देखो त्योहारों का बिल्कुल एक के बाद एक त्योहार लगातार है, ऐसे में अलग अलग प्रकार के हम साड़ियों को ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। आजकल वैसे सलवार सूट वगैरह भी बहुत कुछ पहनने लगी है हमारी सखियां, लेकिन फिर भी त्योहारों में साड़ियों का जो रुतबा और जो रौनक उसको आके जो ग्रेस आती है पहनने पर वो एक अलग ही है। इसलिए इसी आज के दिन हम साड़ियों का संसार लेकर आते हैं। आज हम बताने वाले हैं मंगलगिरी साड़ियों के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, कैसी बनती है और
0: किस राज्य की है,
1: किस राज्य की है।
0: बिल्कुल। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने चुना है प्रसन्नता, जिसे

0: हर किसी को अपनाना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, पर अगर हम प्रसन्नता को अपनाते हैं तो वो दुख के दिन भी बड़े आराम से निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये असली जीवन का आधार है प्रसन्नता। और हम श्रोताओं से चाहते हैं कि आप और संदेश हमें लिख के भेजिए, कुछ ऐसी बात भी लिख के भेजिए, क्योंकि आया तो है, कुछ कमेंट्स आए तो हैं, पर इंतजार है कुछ और उनके संदेशों का। और साथ में जानकारियां भी देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो फूड पैकेट्स पर जो जानकारी लिखी होती है वो पढ़ना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर परिवार को, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या चीज हम तैयार बाजार का अगर उन्हें खिला रहे हैं तो उसमें क्या उनके खान पान में जा रहा है, ये चीज के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है।
0: यानी आंख मूंद के पैकेट वाला खाना नहीं खाना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करना है और भी अन्य सारे उसमें कितने क्या क्या कंटेंट्स मौजूद है वो सारे पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और अभी क्या जरूरी है,
1: गीत बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: सुनते हैं गीत।

0: आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा फल है जिसे हम स्वाद के साथ साथ कई उपयोगों के लिए जानते हैं। नारियल का पेड़ इतना उपयोगी है दीपा कि इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल, पानी, तेल, छिलके और पत्तों तक का उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है और नारियल के इसी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जी, और विश्व नारियल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही नारियल की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे देश में केरल जो राज्य है, जो कि केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपना जो जीवन चलाते हैं।
0: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
1: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है, सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है। यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं। इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं, घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती है और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
0: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
1: जी, और
0: ये दिवस जो है ना, हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोजगार भी देता है।
1: बिल्कुल, और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजने का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू, पी लो नारियल पानी, 1 रुपया दाम है, हजारों का काम है, सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाइयां भी बनती हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो मिठाई होती है खोपरा पाक, ये तो बेहद पसंद आती है कई घरों में, कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है, तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता है।
0: हम कितने समृद्ध है ना इस प्रकृति के साथ। एक साथ ही लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में से श्रीफल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहां तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस, इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ और उसके महत्व

0: नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
1: और आप गाना सुन ले।
0: चलिए

0: दीपा, अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं,
1: शायद फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं। और साड़ी की गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना। और क्या आप भी

0: बताइएगा चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है। या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा, जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतनी भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, ये तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको?
0: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
1: तो चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना, उसी से मिलती है ना।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
1: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहां अनेक पीढ़ियां बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
0: मंगलगिरी साड़ियां जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं लगती है बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है, इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है। तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती हैं। और ये बहुत आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियां, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर सोबर डिजाइन सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
1: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं, और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
0: मंगलगिरी साड़ियां हल्की और आरामदायक होती हैं, गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है और इसीलिए ये साड़ी आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहन सकते हैं। साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई खास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्योहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियां अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कम्फर्टेबल होती है, सरल होती है, और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है वो साड़ियां दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी, क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक होती है वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है, पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल हरा पीला नीला गुलाबी सफेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है, अब तो कथई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोफ जो हल्का जामुनी कलर होता है ना वो भी चल रहा है बहुत ज्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियां उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत ये है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए ये साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त मानी जाती है, जैसे ही सोनाली
1: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं, पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं, और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत, धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
0: बिल्कुल। अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियां पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं तो मंगलगिरी

0: बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकरों की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
1: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है और एक बार पहन के जरूर देखिएगा।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनाली, हमारी एक सखी का ये मैसेज आया है कि जो नारियल है, नारियल दिवस के बारे में उन्हें याद आ रहा है कि मुझे तो बहुत पसंद है कच्चा नारियल, और चटनी भी बनाती हूँ और खूब मजे में हमारे घर

0: में खाते हैं, इसका पानी बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए, खासकर बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूं, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूं, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60 मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूं, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है, वो कहते हैं कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे रोज उठता हूं।
1: अब हम वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक,
0: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए हैं, वो चुन रही थी। तो चलिए, आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, ना अक्सर होता है।
1: बिल्कुल,
0: ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है, इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है या कब बनाया या कब पैक किया गया है, इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है, दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय एमआरपी हमें देखना जरूर चाहिए।
0: साथ ही उस पे दो चिन्ह होते हैं दीपा, खाद्य पैकेट पर अगर

0: हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है, इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी। बिल्कुल ताजा किस्सा बताना चाहूंगा। मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ दो कुकीज के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नजर कुकीज के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज बाय डेट 26 अगस्त 2026 एक्सपायर डेट के कुकीज थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाया। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज उपयोग करने से हम बच गए। इतनी ये जागरूकता हर किसी को जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है। तो इससे उसकी गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताजे पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा, बच्चे मानते नहीं है। तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
0: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना जरूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगीरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना, हम राजगीरा को पूर रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था। सभी ने खाया, जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते, व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए। इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
1: हाँ, बहुत सही जानकारी, कितना सही जानकारी कि अगर आप व्रत में है और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर, इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है। और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य अवश्य जांचना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसैचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए,
1: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर सोच समझकर उस चीज को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना। सखियों, याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं गीत सुनकर के हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी या फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया, यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं।
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हो सोनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी है ना। भाई साड़ी तो लेकर रहेगी, सोनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल, और अपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है, और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए।
0: मेरे लिए तो नहीं कह रही आप।
1: शायद हो भी सकता है।
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर
1: बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं।

0: इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है दो तीन बार पढ़ लेना चाहिए, है ना,
1: या फिर अपने पास रख लेना चाहिए।
0: हाँ, इसको सेव करके रखा जा सकता है, बिल्कुल।
1: एक साथी कहते हैं, प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, सॉरी, प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर,
0: बहुत सुंदर
1: जी।
0: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है। ये तो हमारे मन के भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए।
1: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते रहे।

0: तो दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ
0: जी। हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि पानी वाला नारियल, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटो।

0: कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे। मिश्रण को इस पर फैला दे। घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले। बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी। तो उसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आंच पर चीनी घुलने तक पकाएं और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें अब नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और लगातार चलाते रहें डालने के बाद, और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पे बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए
0: और खा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खूब खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छौंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डालकर भून लीजिए। जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है श्याम रंग से कि श्याम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां शब्द